0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग।
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
0: Standing along this Trishuli river that gushed over the entire town, the smell of bodies which many people fear are still underneath this, roaring sound of the military helicopters, the entire houses here that you see around me, behind me, is covered in silt. I'm Saloni Murarka, reporting for Vyond from Nuwakot, Nepal.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: आप पूरी पिक्चर देख लो।
3: लोन ऑप्शंस बिग,
4: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
5: ब्रांच नेटवर्क बिग।
6: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता।
7: और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
8: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
9: Maddie, I need to open a savings account.
10: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
9: Small bank?
10: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account. Business Maxima, Business Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
9: Okay.
7: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia, and India, WeOn brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WeOn. World is one.
6: Maddie, I need to open a savings account.
2: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
6: Small bank?
2: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
6: Okay.
4: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और FDP इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग.
1: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
4: यार लोन भूल गया. मैरी?
5: Suggest a good bank na.
1: Ujjivan Small Finance Bank.
4: Small Finance Bank.
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
6: There's nothing.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग.
1: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
4: Yaar, loan bhool gaya. Mary? Suggest a good bank, na?
1: Ujjivan Small Finance Bank.
4: Small Finance Bank?
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
5: There's nothing small about it.
6: Ujjivan, nothing small about us.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग. द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग. द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग.
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
4: द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग, द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON, world is one.
5: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
2: ब्रांच नेटवर्क बिग.
4: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता.
5: और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
6: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.